सच में कई बार बहुत ही हैरानी होती है जब जब दुनिया को हम देखते हैं, तो ऐसे ही मन में ख्याल आते हैं कि दुनिया क्यों बनाई हो गई।

पंकज उदास और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये रचना सुनी नाम फिल्म से। और दोस्तों, वाक्य में ही सच्चाई है इस रचना में। हम अपनों को माया के चक्कर में भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को ही भूल जाते हैं और हमारे अपने लोग इंतज़ार करते रहते हैं। अगला गीत जवाहर भाटा फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सही में सादी दाल रोटी खाएं और प्रभु के गुण गाते रहें, इसी में ही हमारी जिंदगी सही बीत जाएगी। और अगला गीत सीता और गीता फिल्म से आपको सुनवाने जा रही हूँ, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आरटी बर्मन।

जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई अनाड़ी तो कोई खिलाड़ी होता है, और बस ऐसी ही जिंदगी चलती रहती है। तो सो इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुक

0: 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिये अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम

गुड मॉर्निंग ब्यूटिफुल पीपल. स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो चुका है 10:07, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो इट्स कलर टू योर लाइफ. और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट सेगमेंट. नमस्ते, हेलो, आदाब, और कैसे हैं आप? आई एम योर दोस्त और होस्ट RJ जागृति. सो टेल मी, कैसा चल रहा है आपका सैटरडे? आप कहोगे सैटरडे की सुबह है और आज थोड़ा लेजी फील हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है. आखिर सैटरडे बना ही इसीलिए है, थोड़ा देर तक सोना, थोड़ा आराम करना और अपनी फेवरेट चाय या कॉफी को चुस्की लेकर पीना, और सबसे जरूरी बात, खुद को थोड़ा वक्त देना. वेदर का तो कोई भरोसा नहीं, कभी गर्मी कभी बरसात, कहीं धूप कहीं छाया, पर एक चीज की गारंटी है, अगले 4 घंटे सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. यहाँ मिलेगा म्यूजिक का तड़का, ढेर सारी बातें और मस्ती का डबल डोज, क्योंकि ये है रेनबो 101.9, और रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन. तो डियर लिसनर्स, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि रेनबो एक्सप्रेस अब चलने वाली है अपनी म्यूजिकल सफर की ओर. टेक इट अवे.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: When the drums beat at Bonaloo, when the verses of Dasarathi echo, when the screen lights up with Telangana cinema, the soul of our state speaks. And every evening from 8 to 9, FM Rainbow 101.9 speaks Telangana. This is Telangana, your dedicated hour for Telangana's history, art, culture, literature and tourism. Celebrate the land, celebrate the people, and celebrate the pride. Telanganam, where Telangana lives on radio.

नमस्ते, हेलो, आदाब। और कैसे हैं आप? शुरू हो चुका है 10 बजे से लेके अब तक हमने इतनी सारी अच्छे अच्छे गाने सुने, और मुझे मन था कि पहले हम कुछ गाने सुन लेते हैं, थोड़ा नो एनर्जी लेवल हाई कर लेते हैं, उसके बाद आज के कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और ऐसे ही गानों के सिलसिले में मैं थोड़ी सी, जो अगले टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो है ब्रिस्क समिट जो इंडिया में हो रहा है।

उसके शायद कुछ न्यूज़ भी आएंगे जो है 11 बजे, और न्यूज़ तो सुनना ही चाहिए, सुबह सुबह अखबार पढ़ना ही चाहिए, और ऐसे ही और बातें करेंगे, गाने सुनेंगे। लेट्स टेक इट अवे।

0: జీవితం ఎప్పుడు ఊహించినట్టే ఉండదు. అనుకోని ప్రమాదం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు.
1: అందుకే ముందస్తు రక్షణ, ప్రతి అడుగుకి భరోసా. పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ మీ ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ తో.
0: మోటార్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, హోమ్, ట్రావెల్, మరెన్నో ఇన్సూరెన్స్ పరిష్కారాలతో
2: మీ ప్రతి ప్రయాణంలో మీకు అండగా ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్.
3: वेलकम बैक लिसनर्स. सो अब समय हो चुका है क्रिकेट के पिच पे जाने का. सो फोकस सेट कर लीजिए क्योंकि अगले 20 मिनट रेडियो पिच पर पेस भी मिलेगा, स्पिन भी मिलेगा, स्ट्रेटजी भी और वो सवाल भी जो स्कोर कार्ड के बाहर छुप जाते हैं. वेलकम टू स्टम्प्ड, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशल जहाँ हम सिर्फ रन्स और विकेट काउंट नहीं करते, हम प्रेशर, प्रिपरेशन, मैच अवेयरनेस और चेंजिंग क्रिकेट कल्चर को डिकोड करते हैं. आज का डिस्कशन फास्ट होगा, फेयर होगा और फुल ऑन क्रिकेट लवर मोड में होगा. पावर प्ले में माइंडसेट से लेकर डेथ ओवर नर्व्स तक, रेड बॉल पेशेंस से व्हाइट बॉल इम्प्रोविजेशन तक, हम देखेंगे कि मॉडर्न इंटरनेशनल प्लेयर को कितने वर्जन्स ऑफ गेम एक ही दिमाग में कैरी करने पड़ते हैं. स्टूडियो में ओपिनियंस रेडी हैं लेकिन फाइनल अंपायर तो आप हो, क्योंकि लिसनर्स प्रोस्पेक्टिव के बिना क्रिकेट कन्वर्सेशन इनकम्प्लीट होता है. सो दिस इज स्टम्प्ड ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. सो आफ्टर दिस सॉन्ग वी विल लिसन द क्रिकेट न्यूज फ्रॉम दिल्ली.

0: వెల్కమ్ బ్యాక్ లిస్నర్స్, యూఆర్ లిస్నింగ్ టు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9. రెయిన్బో కే సాత్ లైఫ్ ఐ రంగీన్. స్టూడియో క్లాక్ మే టైమ్ హో చుకా హై 11:59:32 ఆర్ 12 o'clock కో హమే హై న్యూస్ విచ్ విల్ బీ బ్రీఫ్డ్ బై ఆర్ ఓన్ ఫ్రామ్ ఆర్ హైదరాబాద్. సో ఉస్సే పహలే మే బతా దేతీ హూ కి న్యూస్ కే బాద్ హమ్ బాత్ కరేంగే కి సారాగఢీ డే కే బారే మే, యే ఉన్ 21 సిక్స్ సోల్జర్స్ కే బారే మే వీర్ గాథా హై జో ఇతిహాస్ కే పన్నో మే స్వర్ణ అక్షరో మే రచిత హై. సో ప్లీజ్ స్టాండ్ బై ఫర్ ద న్యూస్.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే జాగృతి శర్మ. अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई. दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है. प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की. प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे. भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है. वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं. भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है. दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं. इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया.
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो. और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है. इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है. दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन

वेलकम बैक लिसनर्स। सो आज हम बात कर रहे थे आज के स्पेशल डे के बारे में। आज है 12 सितंबर और आज ही के दिन बनाया जाता है सारागढ़ी डे। 21 नेम्स अगेंस्ट एन इम्पॉसिबल होराइजन। जी हाँ, 12 सितंबर हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को याद करने का दिन है जिसे सुनते ही शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज है सारागढ़ी डे और अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी केसरी देखी है तो शायद आज का टॉपिक सुनकर आपको इंस्टेंटली उस मूवी की याद आ गई होगी। लेकिन केसरी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, उसके पीछे एक रियल हिस्टोरिकल स्टोरी थी। साल था 1897, दैट इज 1897, और डेट थी 12 सितंबर, आज का ही दिन। एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट थी सारागढ़ी। वहां तैनात थे सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स जिनका लीडरशिप कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। और फिर आया वो दिन जब उन 21 सोल्जर्स के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज आ गई। सोल्जर्स बस 21 थे लेकिन उनके सामने जो उनके एनिमी आए वो थे 1000 में। कहा जाता है कि जो नंबर्स हैं कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 8000 से लेके 10000 तक अफगान के जो उस समय सिपाही थे उनसे मुकाबला करने के लिए आ गए। नंबर्स उनके फेवर में नहीं थे, सिचुएशन भी इजी नहीं था, लेकिन फिर भी उन सोल्जर्स ने अपनी ड्यूटी से पीछे हटने के बजाय अपनी पोस्ट को डिफेंड करने का डिसीजन लिया। और शायद वही होता है रियल करेज। हम और भी इसके बारे में बात करेंगे, इस डे के बारे में बात करेंगे, उन 21 सिपाहियों की वीरता के बारे में बात करेंगे। और फिर सुनते हैं इसी मूवी का, केसरी मूवी का एक गाना जो बी प्राक जी ने गाया है, दैट इज तेरी मिट्टी में मिल जावा। ठीक है।

गाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्ड सारा घड़ी डे के बारे में। जी हाँ, जो आपने ये गाना सुना ये भी केसरी मूवी के तेरी मिट्टी में मिल जावा था, जो बी प्राक जी ने इतनी सुंदरता से गाया है कि अगर आप ये गाना सुनते हैं तो शायद उस समय उन 21 सिखों के बारे में सोच सकते हैं। जिस हिस्टोरिकल इवेंट को हम आज याद कर रहे हैं उसी इंस्पायरिंग स्टोरी ने इस मूवी 2019 की फिल्म केसरी को इंस्पायर किया था। फिल्म में अक्षय कुमार ने हवलदार ईश्वर सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था और मूवी ने सारागढ़ी की कहानी को एक नए जनरेशन, दिस जनरेशन जेंजी तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जब हम मूवी के सीन से बाहर आकर रियल स्टोरी को, रियल हिस्ट्री को देखते हैं तो एक बात और भी पावरफुल लगती है। ये किसी राइटर की इमेजिनेशन नहीं थी, एक रियल स्टोरी थी। 12 सितंबर 1987, सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स ने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखा। और सारागढ़ी की कहानी का सबसे ब्यूटीफुल लेसन शायद यही है। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब है डर के बावजूद आपने फर्ज के लिए खड़े रहना। और ऑनेस्टली ये लेसन सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं है, हम सबके लाइफ में, हम सबके, आपके ऑफिस के स्टूडेंट, सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, जब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती है और हम सोचते हैं क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगी। लेकिन हिस्ट्री के ऐसे स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं यस, हम कर सकते हैं। सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं और कभी कभी हम खुद को कंप्लीटली अलोन भी फील कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो हम अपनी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस कहानी में कहा जाता है कि ये जो चेक पोस्ट है उसके अंदर ये सिख अपने सारे जो हथियार थे उसके साथ बैठे थे और ये एक सिग्नल पोस्ट था दो फोर्ट के बीच में, और जो दुश्मन थे, जो पठान थे, इस पे हमला करना चाह रहे थे। उनके पास जो सामने दुश्मन थे नंबर में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो उनके अंदर जो हिम्मत थी उनसे लड़ने की, उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा कि हमारे पास जो हथियार है वो सही है, हथियार सफिशिएंट है कि नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपने साहस को ही अपना हथियार बना लिया। और शायद यही है कि उन 21 सिखों ने उस जंग में वीरगति प्राप्त की और हमें इतिहास के पन्नों में एक ऐसा कहानी लिख दिया जो हम वर्षों तक, सालों तक हमेशा 12 सितंबर को याद करेंगे। जो आपकी वीरता होती है वो किसी सिचुएशन पे आधारित नहीं होती, वो साहस आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। ऐसे ही बहुत सारी बातें करेंगे और अगला टॉपिक भी बात करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और मैं हूँ आपकी आरजे जागृति। चलिए सुनते हैं अगला गाना मौला रे।

onward first our day, maybe we can make a small promise to ourselves. Let's learn at least the basics. Not because we expect an emergency to happen, but because if life ever puts us in that situation, we don't want to stand there helplessly, wishing we knew what to do. Who knows? One small piece of knowledge you learn today may someday become the reason someone receives help at exactly the right time. And perhaps that is what makes an ordinary person a hero. मैंने आपसे कहा था ना, हीरो बनने के लिए कैप पहनना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी किसी की जान बचाने के लिए बस सही समय पर मदद करना काफी होता है। और इस मौके पे मैं थोड़ा एक चीज और भी पूछना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा सवाल। आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? और अगर है, तो उसमें क्या-क्या है? एक बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेड्स होते हैं, सैनिटाइजर होता है, एंटीसेप्टिक सप्लाईज होते हैं, मेडिकल टेप, क्रेप बैंडेज, डिस्पोजल ग्लोव्स और थर्मामीटर जैसे इसेंशियल्स होने चाहिए। और हाँ, कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे फीवर का, पेन रिलीफ का मेडिसिन, ORS घोल और कुछ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जैसे जब भी आप रेगुलर चेकअप पे जाते हैं, अपना रिपोर्ट दिखाते हैं, तो कुछ आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मेडिसिन भी होने ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मेडिसिन रखने से पहले और उससे यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। बिना प्रॉपर एडवाइस के कोई भी मेडिसिन यूज ना करें। तो आज का छोटा सा होमवर्क, अगर कहीं आप बाहर हैं, अगर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने घर पे अभी नहीं पहुंचे हैं, तो घर जाकर अपना फर्स्ट एड बॉक्स जरूर चेक करिएगा। क्या पता एक छोटी सी जरूरी चीज मिसिंग हो। और जो घर का फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, आप कब खोलते हो? अक्सर जब कोई जरूरत पड़ चुकी होती है। लेकिन एक 5 मिनट्स मंथली चेक कितना रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल रिचुअल हो सकता है। पैकेजिंग इंटैक्ट है कि नहीं, सारे मेडिसिन्स की पैकेजिंग इंटैक्ट है कि नहीं, इसेंशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स विजुअल है या नहीं, और फैमिली को किट का एग्जैक्ट प्लेस लोकेशन पता है, सो दैट कोई भी इमरजेंसी पड़ने पे अगर छोटा बच्चा भी है तो उसको भी पता हो कि फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ रखा, फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ रखा, उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी सेव हो। ये टाइनी सिस्टम क्राइसिस को एलिमिनेट नहीं करते हैं, पर कंफ्यूजन को जरूर रिड्यूस करते हैं। मैं हूं आपकी आरजे जागृति, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और ऐसे ही और भी बातें करेंगे, चलिए सुनते हैं एक गाना।

వెల్కమ్ బ్యాక్ లిసనర్స్, యూఆర్ లిసనింగ్ టు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 రెయిన్బో కే సాత్ లైఫ్ రంగీన్. మే హూ ఆప్కి ఆజే జాగృతి. ఔర్ ఆజ్ కా జో ఏక్ గానో కా సిల్సిలా చలా హై ఔర్ టాపిక్ కే బారే మే జో హమ్నే బాతే కియా హై, ఇతనా అచ్చా సఫర్ రహా హై, మ్యూజికల్ సఫర్ కే సాత్ ఇన్ఫార్మేటివ్ సఫర్ భీ రహా హై. ఔర్ యే జో సెగ్మెంట్ హై హమారా ఆ గయా హై హెలో రెయిన్బో కా, ఠీక్ హై. సో హెలో రెయిన్బో సే పహలే మే ఏక్ ఛోటా సా ఔర్ ఏక్ డే బతానా చాహతీ హూ, వో హై नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट. जी हाँ, नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट भी है जो 2007 में हार्डिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लिंक्ड ऑब्जर्वेशन के रूप में पॉपुलर हुआ. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकरेजमेंट प्रेज से डिफरेंट होता है. आपको पता है प्रेज अक्सर रिजल्ट को सेलिब्रेट करता है, इनकरेजमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करता है. तुम जीत गए अच्छा लगता है, लेकिन तुम डिफिकल्ट फेज में कंसिस्टेंसी रखी किसी इंसान को अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है. जेन्युइन एनकरेजमेंट स्पेसिफिक होता है, जेनरिक गुड जॉब से बेटर होता है. सेंटेंस जो एफर्ट को नाम दे, तुमने पेशेंटली से सुना, तुमने मिस्टेक एक्सेप्ट किया, तुमने रिस्टार्ट किया, तुमने किसी को स्पेस दिया, ये जो स्पेसिफिक वर्ड इंसान को ये फील कराते हैं कि उन्हें बस नोटिस नहीं, एक्चुअली देखा गया है. सो जी हाँ, जो हमारा आज का टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं इसलिए आपसे ये बात बता रही थी कि आपने जीवन में अपने जो है कब कब किसी ने आपको इनकरेजमेंट दिया है. ये नहीं कि आप कोई चीज़ जीत के आ गए तब आपसे कहा गया कि यू डिड इट वेल, आप प्रेज किए. नहीं, आपके प्रोसेस के दौरान, उस जर्नी के दौरान किसने आपको बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत इनकरेजमेंट किया है, ये मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे. और एक और सवाल भी है विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू टूडे इज डे, विच इज फर्स्ट एड डे. आपके घर में अगर फर्स्ट एड बॉक्स है तो ऐसी कौन सी तीन बेसिक चीज़ें हैं जो सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. ये दो सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी और आपके कहानियां सुनूंगी, आपके जवाब सुनूंगी. और यस, ये वही सेगमेंट होता है जहां हम आपकी बातों को सुनते हैं, आपके अरे मैंने तो नंबर बताया ही नहीं, पहले तो नंबर बता देती हूँ आपको. तो हमारा नंबर है 0402323-0030, 0402323-4821. एक और नंबर भी है 0402970-4715. आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज भी कर सकते हैं, वो है 4023234822. आप अपने अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ये लंच का टाइम हो सकता है, अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सारे मैसेजेस को पढ़ते हैं. तो जी हाँ, आप और हम एक चीज़ बता दें कि जो फ़ोन आता है ना, हमें किसी का नाम पता नहीं चलता, हमें आईडी नहीं दिखती, हमें बस मैजिकल ब्लिंक दिखता है हमारे टेलीफोन में. इसमें ब्लिंक्स आते हैं कि ओके किसी का कॉल आ रहा है, तो उस ब्लिंक्स के हिसाब से वो मैजिकल ब्लिंक्स हैं कि आपसे हमें कनेक्ट करती हैं. तो अगर किसी का कॉल छूट गया है, मिस हो गया है, कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो फिर यस, वो मैजिकल ब्लिंक की गलती है. ठीक है, हम और भी गाने सुनते हैं. अभी जो नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ है जावेद वशी जी की आवाज़ में, ये तूने क्या किया.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन और शुरू हो चुका है हमारा हेलो रेनबो लाइव फोन इन प्रोग्राम। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमने आपको नंबर बताया है, फिर से एक बार बता सकती हूँ, 0402323-0030 और 0402323-48221, 0402970-4715। आप हमें इंस्टेंट मैसेज भी कर सकते हैं और नंबर है 4023234822। जी हाँ, और हम गाने का ऐसे ही और भी गाने सुनते रहेंगे। और जो ये सेगमेंट होता है, इसमें मैं थोड़ा रेट्रो सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट ये जो एक से दो जो कॉलिंग सेगमेंट है वो आपके लिए है। और हम बात कर रहे थे जब इससे पहले, बिफोर लाइव फोन इन प्रोग्राम के पहले, नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट के बारे में। तो जो इनकरेजमेंट की टाइमिंग भी ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप कभी कभी कभी किसी की बहुत ही ऐसे शाबाश ऐसे कहते हैं, बट वो साइलेंस के बीच में उसकी ज़रूरत होती है जब रिजल्ट पेंडिंग हो, जब कॉन्फिडेंस आपका एकदम डगमगा जाए, या जो जो हमारा प्रोग्रेस हो वो दिख ना रहा हो, तब एक मेजर्ड सेंटेंस एक इमोशनल हैंडल बन सकता है। लेकिन वो जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है जो लोग देते हैं, उससे बचना होगा, क्योंकि वो उतनी ज़रूरत नहीं होती। सब ठीक है कहने के बजाय हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये कहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं, अभी हम कॉल, यस हेलो,
1: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम, श्रीनिवास राम मलकपेट माँ।
0: हेलो, हाँ जी श्रीनिवास जी, आपका आवाज़ आप कहीं थोड़ा दूर होके बात कर सकते हैं? यस, मैं आपको सुन सकती हूँ।
1: हाँ बोलिए मैडम, टॉपिक क्या दिया मैडम?
0: आज मैंने आपको दो टॉपिक दिया सर। पहला है कि जो आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें तीन बेसिक चीजें क्या होती हैं, और दूसरी जो टॉपिक है वो है कि रिजल्ट मिलने पे तो सब लोग शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, लेकिन जब तक रिजल्ट ना मिला हो उस समय आपको इनकरेज कौन करता है? किसी ने आपको किया है इनकरेज? ये दो,
1: क्योंकि पहला चीज आप बोले सो फर्स्ट एड बॉक्स में, पहला मेरे आइडिया में तो कैंची कंपलसरी है, सीजर।
0: ओके,
1: सीजर कंपलसरी है और बैंडेज कंपलसरी है।
0: ओके, बैंडेज और सीजर,
1: बैंडेज, आयोडीन या बोरोलिया बोरो प्लस, या नहीं तो क्या है पाउडर है तो पाउडर भी हमारे पास कंपलसरी रहता है। तो कभी भी कुछ मार लगे तो करे तो, या खून निकले तो उसको बैंडेज करके करके आयोडीन आयोडीन रहता, यानी तो हमारे पास क्या है व्हाट यू कॉल दिस डेटॉल रहता है, डेटॉल के साथ साफ कर लेके उसको पूरा क्लीन करके बैंडेज बन के आइंटमेंट लगा के, या आइंटमेंट या डिपेंड अपॉन दी मार्क को जो है सर ये कर लेके उसको आइंटमेंट लगाना, यानी तो पाउडर लाए तो चलता वो लगा लेके बन देते हैं।
0: हाँ,
1: ऐसा
0: बिल्कुल
1: हमारे को
0: जी
1: कंपल्सरी आयोडीन बॉक्स नहीं है, मगर क्या है एक हमारे ड्रा है, ड्रा में पूरे रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दूसरा चीज आप बोले के जो काम करने के बाद जो है शाबाशी नहीं मिला तो आप डिस्करेज होते नहीं होते क्या होते, कौन आपको इंकरेज करती
0: जी?
1: नाम मिला
0: जी, ये था कि जब जब कोई रिजल्ट अच्छा आता है तो इनकरेज करने सब लोग आ जाते हैं, प्रेज करने आ जाते हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट ना आया हो उस समय में आपका जो मोटिवेशन होता है, आपका धैर्य बांधने के लिए किसी ने आपको ऐसा इनकरेजमेंट किया है।
1: यस, तो आप बोले से अच्छा है,

De eso, since so many years we are living in the area. So not less than 65 years we are spending in the locality. So एक ही घर में है हम लोग, हमारा फैमिली पूरा एक ही घर में, हम एक ही जगह में रहते हुए, हम तीनों भाइयाँ हैं, तीनों भाइयाँ हमारे

0: मैं तो कभी भी लोगों को देख के उन लोगों को क्या नीड, व्हाट इज द नीड इज देयर, देख लेके हम जो भी काम करते रहते, तो ऐसा कभी हमारे को डिस्करेज हुए वैसा कोई भी हमारे को नहीं बोले. एक्चुअली आई सी गेट गुड रिजल्ट्स ओनली, सो अदर पीपल आर सपोर्टिंग मी, एंड अंटिल एंड देयर कोऑपरेशन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन द लोकल, आई मीन इन द पार्क. सो उसीलिए क्या होता है, हम कभी भी डिस्करेज हुए नहीं. डिस्करेज होने का सवाल ही क्यों नहीं होता, वो तो लोग मेरे पीछे रहते हैं कंपल्सरी, दे आर विद देयर कोऑपरेशनली आई एम डूइंग दी वर्क एक्टिविटी जो भी है. एक्टिविटी सबसे मिलके सबसे का इंटरेक्शन लेते हुए हम लोग काम करते हैं, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्करेजिंग दी एक्टिविटी. तो ऐसा हमारे को कभी नहीं आया, तो अगर आएगा तो लोग है थोड़े अच्छा सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो
1: जी
0: उनका आइडिया लेके फिर हम उसको रेक्टिफाई कर लेके काम करते हैं. बट आई नेवर गेट दी दिस थिंग, नो रिमार्क्स आर देयर, गुड रिमार्क्स ओनली आई एम गोइंग टू गेट.
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कहा. दैट्स वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू हैव शेयर योर स्टोरी विथ अस. एंड यस, हेलो रेनबो में कॉल करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.
0: धन्यवाद मैडम.
1: हेलो.
2: हेलो माँ जागृति.
1: हाँ, जागृति बोल रही हूँ.
2: नहीं मैं हिंदी में, हिंदी में बोलने को आता नहीं मुझे.
1: आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे कह सकते हैं, हम आपकी बात समझ सकते हैं.
2: तेलुगु में बात करता हूँ.
1: हाँ, आप करिए, मैं थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी और आपके साथ सीख भी लूंगी आज मैं तेलुगु.
2: क्या फर्स्ट फर्स्ट का बात आया ना, फर्स्ट में सोप रहती है और फर्स्ट में हमारा कहने भी रहती है, प्लास्टर वो बोरिक पाउडर वो ऐसा रहता है. वो क्या तो मारा गिरा लगे तो वो लगाने को देखे तो बिल्कुल हॉस्पिटल लगे तो क्या तो कम है तो डॉक्टर देखता है.
1: करेक्ट.
2: पैसा देना हमें फर्स्ट एड करना, फर्स्ट एड कर तो बिल्कुल डॉक्टर के पास गए तो
1: जी
2: वैसा मुझे बात करने को हिंदी में आता नहीं. मैं
1: कोई बात नहीं, आप जैसा बात कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. आप तेलुगु भी बात कर सकते हैं.
2: ऐसा सुबह अभी क्या है माँ बोलो माँ.
1: हाँ, दूसरा टॉपिक ये था कि आपको कोई जब डिफिकल्ट सिचुएशन आया है तो उस टाइम पे कौन आपको बहुत इनकरेज किया, वो आपका दोस्त
2: हाँ
1: या कोई हो सकता है.
2: मुझे डिफिकल्ट है तो मैं मुझे पाम है ना, पाम टूटा है, पाम टूटा तो मुझे मेरा फ्रेंड फ्रेंड ब्लॉक जाको वो उसमें हॉस्पिटल जाको हमारा फ्रेंड दिखाया. फिर बाद में हमारा भाई हमारा बेटा सब देने आया को मुझे मार को वो डॉक्टर से वो ऑपरेशन कर को वो सीधा कर को 1-4 महीने उन्होंने करा. मेरे बेड में रहे तो भी हमारा वाइफ मेरा वाइफ देखता रहा. ये जो सुमार जो 20-20 बरस को 20-30 बरस जाए को आगे आगे गया उसमें उसके आगे 30 बरस बाद में गया हो टूटे फिर अच्छा है वो.
1: अच्छा लगा, थैंक यू फॉर शेयरिंग. आप बहुत अच्छे से अपना स्टोरी शेयर किया हमारे साथ.
2: अच्छा माँ.
1: थैंक यू. जी हाँ, हमें वो जब बात करने की शुरू होता है तो मैं सोचती हूँ इनको कितना सुन लूँ मैं, लेकिन हमारे पास भी समय का पाबंदी होता है. हमें और भी कुछ यहाँ पे गाने बजाने होते हैं आपके लिए. और कितना अच्छा अच्छा बात है उन्होंने बताया कि जो आज का अवेयरनेस है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, जो कि आज हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. लोगों ने हमें सजेशंस भी दिए कि हाँ क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, बोरो प्लस सैनिटाइजर और वो पाउडर, ऐसा बेसिक जो चोट लगने पे या आप तुरंत ऑन्यूमेंट या फिर ऐसा कुछ जेल, जैसे कि पेन हो रहा है तो आप उस पर तुरंत लगा लें. ऐसे ही बातें सुनेंगे, गाने भी सुनते हैं. चलिए हम सुनते हैं अपना अगला गाना जो है राज कपूर जी की आवाज में, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार. यस.

0: बहुत ही अच्छे
1: अब
0: लोग
1: मैं
0: हैं।
1: हाँ बहुत मेरे को बहुत मदद किया मेरे फ्रेंड्स और नेबर,
0: जी
1: ये मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ बोलता हूँ उनकी मेहरबानी से मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, उनकी शुक्र अदा करता हूँ मैडम जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उनकी स्टोरी, आप उनकी प्रशंसा पूरे आकाशवाणी इस फोन इन पे करके सब आपको सुन रहे हैं, तो अच्छा लगा आपने हमारे साथ ये शेयर किया।
1: थैंक यू वेरी मच
0: थैंक यू।
1: मैडम जी, थैंक यू।
0: हेलो रेनबो
2: हेलो,
0: जी। हेलो रेनबो।
2: हाँ भावना रहा मैडम जरा।
0: हाँ मैं ठीक हूँ। आप आज के टॉपिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और अपना नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप बता दीजिए।
2: मैं के रमेश बात कर रहा हूँ। मैंने
0: ओके रमेश जी।
2: ऑनलाइन
0: हाँ, ऑन एयर है।
2: अच्छा टॉपिक क्या है मैडम?
0: ओके, तो टॉपिक है कि आपके घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें तीन बेसिक चीजें क्या है।
2: अच्छा हाँ, एक एक जो है डेटाइल रखता हूँ मैं कंपल्सरी डेटाइल,
0: हाँ डिटॉल।
2: और एक बर्नल ऐसा रखता हूँ। बर्नल वो तो कुछ इवन कुछ देर काल लेना चेसा पेट्कोड़ा कुछ बैंडेज पेटेस्तान,
0: हाँ
2: क्योंकि इंट्लो मतलब घर में हमेशा कप का दग्गु मंदु जलुब मंदु टाइप कंपल्सरी।
0: अच्छा करेक्ट।
2: इम्पोर्टेंट एपना इमरजेंसी में भी काम आने ऐसा हर
0: हाँ
2: चीज, अपना सर्दी के लिए बुखार बुखार के लिए ऐसा कुछ टैबलेट हमेशा रखे तो कुछ तो कर देना बस।
0: जी सही कहा आपने।
2: के रमेश उस्मान,
0: हाँ थैंक यू। थैंक यू
2: आपका
0: रमेश।
2: आपका नाम क्या मैडम? जागृति।
0: जागृति।
2: अच्छा ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद। थैंक यू। कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। ये भी बताया है कि जो हल्दी होता है ना, एंटीसेप्टिक उसमें क्वालिटी होते हैं, और जब भी आपको चोट लगे तो उस पर इमीडिएट आप हल्दी भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे कॉलर्स ने सजेशन दिया है। तो यही तो होता है, यही होता है जब हम आपसे बात करते हैं, आप हमें सजेशंस देते हैं जो कि सबके लिए अच्छा होता है, सारे लिसनर्स के लिए अच्छा होता है। अब इतनी सारी बातों का सिलसिला चल चुका है तो एक गाना भी सुन लेते हैं। ये गाना है किशोर कुमार जी की आवाज़ में, पन्ना की तमन्ना है।

0: Ma'am, I've been listening to you since morning. Thank you for keeping us entertained. My name is Ahmed, speaking from south of Hyderabad. So to answer your question, your first question, ma'am, कि फर्स्ट डेट में तीन चीजें क्या रहनी चाहिए? वो पहली तो है कि एक मोहब्बत जरूर रहनी चाहिए, दूसरा है ख्याल, तीसरा है समानुभूति, विच इज एम्पैथी. ये तीन चीजें जरूर रहनी चाहिए. और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हर इंसान की जिंदगी में जैसे कुछ वक्त आता है जहां पे वो बहुत ही ज्यादा लो फील करता है, वैसे ही मेरे भी जिंदगी में एक फेज आया था जिसमें से मेरा एक दोस्त ने मुझे एक शायरी भेजी थी. डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने वो शायरी लिखी थी. उन्होंने कहा कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं. ये खैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी? ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं?
1: बहुत
0: तो
1: खूब।
0: ये जो शायरी है मुझे बहुत एंकरेज करी. एंड एज यू मेंशन कि प्रेज एंड एंकरेजमेंट में डिफरेंस यही होता है कि प्रेज आपको गोल को पहुंचे बाद से मिलता है एंड एंकरेजमेंट प्रोसेस के दौरान मिलता है. एंड दिस वाज माय एंकरेजमेंट मैम. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग फुरकान। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
0: थैंक यू.
1: कितनी ज्यादा बातें लोग करते हैं और कितना अच्छी बातें। मुझे लग रहा है कि पूरा 4 घंटा उन्होंने सुन के और मुझसे वो कह रहे थे आपने ये बातें हमारे साथ की हैं, आपने ये बताया है हमें। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने दिल की बात हमसे शेयर करते हैं। और ये 4 घंटे के जो सफर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 2 कैसे जाता है हमें खुद नहीं पता चलता है। हमने बात किया सारागढ़ी डे के बारे में, फर्स्ट एड डे के बारे में और ब्रिक्स के बारे में। तो अब ये समय आ गया है आपसे विदा लेने का और हमारी जो नेक्स्ट आ रहे हैं ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुके हैं, फुल प्रिपरेशन के साथ आ चुके हैं आपको फिर से इंटरटेन करने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए। समय आ गया है, मैं विदा लेती हूँ। और प्लीज बी काइंड टू एनिमल्स, प्लीज बी काइंड टू योर सेल्फ, काइंडनेस डजन नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। दिस इज योर आरजे जागृति साइनिंग ऑफ।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: When the drums beat at Bonalu, when the verses of Dasarathi echo, when the screen lights up with Telangana cinema, the soul of our state speaks. And every evening from 8 to 9, FM Rainbow 101.9 speaks Telangana. This is Telanganam, your dedicated hour for Telangana's history, art, culture, literature and tourism. Celebrate the land, celebrate the people and celebrate the pride. Telanganam, where Telangana lives on.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। अभी आप मेरे रेडियो साथी सत्ता शिवा कृष्णा से रिमझिम हैदराबाद सुन रहे थे। सामाइन, इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 28 सेकंड हुआ चाहते हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नारंग।

0: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
1: सामीन आप सुन रहे हैं बज़्मे नरंग। आइए सुनते हैं सीत आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा के तहत फीचर। बानवान आलमी योम तिब्बी इमदाद वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तहरीर और पेशकश डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान की है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे करोबियां।

दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की सेहत की देखभाल करने वाले इदारे और कम्युनिटी इस दिन की मुनासिबत से वर्कशॉप, अवामी मुजाहरे और तरबियती मुहिमात मुनक्किद करते हैं। हादसात और तिब्बी हंगामी हालात कहीं भी किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। अक्सर हम फ़र्क समझने के लिए महज चंद सेकंड्स बाकी रह जाते हैं। आलमी योम इब्तदाई तिब्बी इमदाद हमें याद दिलाता है कि फौरी निगहदाश्त जाने बचा सकती है। आलमी योम इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहिम से कम्युनिटी की तैयारी हंगामी हालात से निमटने की आमदगी पर दोबारा तवज्जो मरकूज होगी। अगरचे के इस साल का सरकारी मौजू रोज़मर्रा की बहादुरी की ताकत को उजागर करता है, लेकिन बुनियादी मकसद आलमगीर ही रहता है। आम अफराद को गैर मामूली ज़िंदगी बचाने वाली महारतों से लैस करना है।

पहला सबक था किताबे खुदा का, पहला सबक था किताबे खुदा का, कि सारी मखलूक है कुंबा खुदा का। आलमी योम इब्तदाई तिब्बी इमदाद 2026 का सरकारी मौजू फर्स्ट एड्स इन माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट है। इस साल की तवज्जो इन अहम तिब्बी, जिस्मानी और नफसियाती कमज़ोरियों पर मरकूज़ है, जिनका सामना ख़तरनाक नकल व हरकत के रास्तों पर लाखों बैनुल अक्वामी तारिक वतन, पनाह गज़ीनों और बेघर अफराद को करना पड़ता है। चूंकि नक़ल मकानी करने वाले अफराद को अक्सर बाकायदा सेहत की देखभाल तक रसाई में रुकावट का सामना होता है, इसलिए काबिल रसाई सकाफती तौर पर हसास और फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के ज़रिए इस खला को पुर करना नहायती अहम हो जाता है। जामे हंगामी मुआविनत पर जोर देते हुए, जैसे थकन, पानी की कमी, सदमे और नफसियाती परेशानी का इलाज, इस साल का दिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्रवाई और यकजहती को उजागर करता है, ताकि इंतजामी हैसियत से ख़तः नज़र, विकार का तहफ़ुज़ और जाने बचाया जा सकें।

गोलियों से जिस्म को ठंडा करना, अगर वो बेहोश हो तो पानी या दीगर सयाल फराहम करना जिस्म के गैर मामूली हद तक गर्म होने को काबू में मदद देता है।

आर्टिमिस हॉस्पिटल्स हंगामी और ट्रामा केयर में किस तरह मुआवनत करता है। हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे हंगामी खिदमात फराहम, अहम इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़रूरियात के लिए 24 घंटे की दस्तियाबी, तजुर्बेकार एमरजेंसी फिजिशंस फौरी जायज़े और मरीज को मुस्तहकम करने में माहिर आला तरियब याफ्ता अमला मौजूद रहता है। ट्रामा केयर शदीद हादसात और चोटों के इंतजाम के लिए जामे प्रोटोकॉल्स, जदीद इमेजिंग, फौरी तशखीस के लिए जदीद तरीन रेडियोलॉजी सहूलियात, क्रिटिकल केयर सपोर्ट, जदीद तिब्बी निगरानी के लिए जदीद तरीन इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स, कशीर शोबे जाती माहिरीन, कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स किस तरह के साथ हमवार राबता कारी।

एम्बुलेंस खिदमत अच्छी तरह से लैस ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जो रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचने की पहली तिब्बी निगहदाश्त फराहम करती है। बस के दुश्वार हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं है इंसान होना।

अभी आप गीत सुर ले गाते जा समात फरमा रहे थे। आज का मौजू था आलमी योम तिब्बी इमदाद। सामाइन बज़्म-ए-नरम को जय रखते हुए आइए सुनते हैं कुछ गज़लियात।

और क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। ये शेर जिंदगी की तल्ख हकीकतों, कुर्बानियों और मजबूरियों की अक्कासी करता है। जब पास बेचने के लिए कुछ न हो, तो अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजुएं ही कुर्बान कर दें। ये उन लोगों की दास्तान है जो हालात के हाथों अपने दिल के अरमानों को तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज का पैगाम ये है कि जिंदगी में बाज़ाओकात इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने ख्वाबों की कदर करना भी जरूरी है। वक्ती फायदे या दबाव के तहत अपने तमाम मकासिद और उम्मीदों को कुर्बान कर देना दानिशमंदी नहीं। ख्वाब ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अपने ख्वाबों और मकासिद की हिफाजत करो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का सरमाया है। हालात से समझौता जरूर करो, मगर अपने हौसले और उम्मीदों को मुकम्मल तौर पर फरोख्त तो न करो। जरूरत इंसान से बहुत सी कुर्बानियां मांगती हैं, लेकिन कामयाब वही है जो मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों की रोशनी को बुझने न दे। अगर कुछ ख्वाब कुर्बान भी करने पड़ जाएं, तो नए ख्वाब देखने का हौसला जिंदा रखो।

0: सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today, being Saturday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye, aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची, नमस्कार. और राजेश,
0: आपको भी वेलकम टू यू.
2: गुड इवनिंग राजेश.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानें सुर्खियां.
0: ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन On the first day of BRICS Summit 2026, leaders advocate for multilateral approach that respects diverse viewpoints and positions on global issues. SEBI releases consultation paper proposing changes to closing auction session and derivatives settlement. And benchmark domestic indices register weekly decline of over 2%.
1: ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स समिट 2026 के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया. नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण और रुख का सम्मान करने वाले बहुपक्षीय नजरिए को बनाए रखने की बात कही. सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और डेरिवेटिव सेटलमेंट में बदलाव का प्रस्ताव देते हुए परामर्श पत्र जारी किया और प्रमुख शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण तथा अलगाव की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा 2026 में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी के मौजूदा रुझान पर चिंता व्यक्त की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्र के समापन पर इस घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा. अपने समापन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा सदस्य देशों के साझा संकल्प के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है. आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले. हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए.
1: सिद्धार्थ, ग्लोबल साउथ का साझा संकल्प, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए.
2: देखिए, ब्रिक्स का जो जब बनाया गया था तो ये एक धारणा थी, ये मानना था कि तकरीबन 2006 में और सन 2000 में इसकी कल्पना
1: जी.
2: एक व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक्स में जिन्होंने इसकी कल्पना की और उसके बाद ये माना कि आने वाले समय में ये चार देश जिसमें ब्राजील था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, चाइना, और तो इनकी ये जो है

0: उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनमें इसमें इनका बड़ा रोल होगा, और साथ साथ उसमें उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जुड़ा।
1: जी
0: तो और उसका जो बेसिक, जब पहली बार ये इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2009-10 में जो सम्मेलन हुआ, उसमें ये था कि कैसे जो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, कैसे ग्लोबल साउथ का जो सवाल आपने किया कि उनको जो है कैसे उनकी उनको भी इस पूरा जो दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति है उसमें उनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए। ग्लोबल साउथ से हम हमारा मतलब होता है जो ऐसे देश जो डेवलपिंग देश हैं, जो भी थोड़ा पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, अभी पूरी तरह से
1: या
0: विकसित
1: विकास
0: नहीं
1: की
0: हुए।
1: राह में आगे हैं।
0: हाँ, आ रहे हैं, मतलब विकास की राह पर हैं,
1: जी
0: आगे नहीं हैं, वो पीछे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है बदलते हुए समय के। लेकिन आप देखेंगे जैसा अभी दिख रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, डेमोक्रेटिक जो अलग-अलग जो विचारों को लेके जो है, अब उतना उसकी उसको समावेश करना या उसको एक्सेप्ट करना,
1: जी
0: उसको लेके जो है एक विरोधाभास है या आपस में एक तालमेल जिसको कहें नहीं है, या उसे एक्सेप्ट करना कि उस विरोधाभास में भी हम साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर बैठें। तो मुझे लगता है एक तो एक वही सबसे बड़ा वो है, साथ साथ जो अभी दुनिया में हम देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह का जो एक, चाहे आप अमेरिका ईरान का हो या अमेरिका ईरान और इसराइल एक तरफ है, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रही है, तो इसको लेके भी चिंता है, क्योंकि कि ब्रिक्स का मानना है कि इस समूह का मानना है कि इन सब चीजों का जो समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, लड़ाई से किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता।
2: So, Siddharth, to what you said about the leaders advocating for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. And one major development that has taken place is India's Middle East peace push at BRICS, where UAE Crown Prince met with Iranian President Pezeshkian. So that's a step in the right direction, and a real essence of what is happening at BRICS is showcased in this meeting. Perhaps there could be some outcome, positive outcome.
0: एब्सोल्युटली राजेश, एंड आई थिंक इंडिया हैज़ बीन टेकिंग दिस पोजिशन और मेकिंग और ट्राइंग टू ब्रिंग नो नेशंस विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और विद डिफरेंसेस नो टू टॉक टू ईच अदर एंड ब्रिंग देम टू रीजनेबल सम काइंड ऑफ अ रीजनेबल डायलॉग टू रीच सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन टू दी एग्जिस्टिंग स्टेलमेट और इश्यूज। एंड एज यू राइटली सेड विद यूएई एंड हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम यूएई और एंड ईरान टॉकिंग, सो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दिस राउंड ऑफ डेली ब्रिक्स लीडर्स मीटिंग आई वुड से। एंड वी हैव बीन सेइंग दिस एंड वी बीन ऑल्सो सेइंग दैट इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश द कॉज ऑफ नेशंस विच वेयर वी सी टूडे सप्लाई चेन्स आर डिसरप्टेड, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इज एट इट्स हाइट, प्लस देर इज स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, एंड सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंश्योर दैट ग्लोबली देर इज नो द सप्लाईज ऑफ एनर्जी एज फार एज द इशू ऑफ एनर्जी सप्लाईज इज कंसर्न, एज फार एज अदर सप्लाईज ऑफ फर्टिलाइजर और एसेंशियल आइटम्स, सो वी बीन ऑल्सो पुशिंग द कॉज ऑफ दोज कॉजेज ऑल्सो।
2: We have two callers online with us, both from Delhi. First, we go to Premjeet. Premjeet, a warm welcome. Please ask your question.
3: Very good evening to all of you, sir.
2: Good
3: And
2: evening.
3: we are very blessed that we are having BRICS summit right now.
2: जी
3: सिद्धार्थ सर, मेरा सर सवाल ये है कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा कि सी फेरर को, बिकॉज सर आई एम ऑल्सो ए सी फेरर, इंक्रोच करने के लिए और उनके इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे ब्रिक्स के सिंडिकेट को एक्नॉलेज किया। सर आप इस पर जरा अपना प्रकाश डालें सर। धन्यवाद सर।
0: नहीं, प्रेमजीत जी, गुड इवनिंग, नमस्कार आपको, और आपने जो सवाल उठाया आज के समय में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी हमने देखा है जो गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है, जो बार बार जो जिस तरह से जब से अमेरिका और ईरान के बीच और इसराइल के बीच में ये जो युद्ध छिड़ा है उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से 40% जो तकरीबन तेल की सप्लाई, तेल और गैस

0: की सप्लाई होती है दुनिया को, वहां पे जो पानी के जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाई होती है उन पे हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब अटैक्स होते रहे हैं, और एक इस और ये वजह बहुत बड़ी चिंता है। इसी को शायद प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पूरे ब्रिक्स के सभी देशों का, जो 11 देश इस ब्रिक्स के समूह में, साथ साथ जो पार्टनर देश हैं, और ये इस समय बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये हाल फिलहाल में भी हम देखेंगे तो लगातार इस तरह के जो अटैक्स जो हैं पानी के जो जहाज जिनके थ्रू ये सप्लाईज ऑयल एंड गैस की सप्लाईज होती है उन पे हो रहा है। तो और बिल्कुल वाजिब बात आपने जो कही, सीफेरर्स जो आप लोग उस पर काम करते हैं, उसको उसका संचालन करते हैं, तो उनके उनकी जान माल और उनकी सुरक्षा जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को शायद उठाने की कोशिश की, और उन्होंने ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि कम से कम ऐसे उपाय किए जाएं ताकि ऐसी चीज स्थिति से हम लोग बच पाएं।
1: दिल्ली से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: मैम, मुझे पूछना है कि क्या कहते हैं, अगर निफ्टी में किसी स्टॉक का वेट 10% है तो उसमें अगर 1 या 2 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो इंडेक्स में कितनी मूवमेंट होती है, नंबर वन। नंबर टू, कि हमारा अगर निफ्टी 20 पॉइंट अगर डे एंड पे एंड होता है, क्लोज होता है 20 पॉइंट प्लस में, तो जो सेंसेक्स है उसका 1, उसका 3 टाइम्स होता है, ऐसा क्यों?
0: अमित जी, एक तो आपका पहला सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है कि कितना पॉइंट अगर वो चढ़ता है किसी शेयर में, अगर वृद्धि होती है तो उससे निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आता है। और जहाँ तक आपने उसका बीएसई से जो आपने कंपैरिजन किया, एक वो मोटा अनुमान माना जाता है कि तकरीबन 3 गुना है, बट ऐसा कोई मतलब कोई इस तरह की कोई वो नहीं है कि विनय जी माफ़ कीजिएगा, आपका नाम मैंने नाम गलत बोला, विनय जी, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उसका कोई ऐसा कोई आधार है कि जिसको हम मान के चलें कि इतना गिरेगा तो इतना ही होगा। हालांकि और इस आधार को भी अभी जो नया सेबी ने अभी जो सिस्टम आया था क्लोजिंग ऑक्शन का, जो प्राइस डिस्कवरी का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स का, उसमें इस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आ रही थी, तो मुझे लगता है ऐसा कोई इसको आधार ना माने आप। और
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न सिद्धार्थ से ये है सर, कि अभी जो ब्रिक्स ने समिट हो रहा है अपने देश में, नई दिल्ली में, तो एक ब्रिक्स करेंसी की बात सामने आ रही है, तो क्या ये ब्रिक्स करेंसी डॉलर और यूरो की तरह ही मतलब प्रचलन में आ जाएगा सर? और दूसरा प्रश्न ये है सर, कि जैसे अभी ट्रंप, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी का स्टेटमेंट आया था कि ईरान वॉर कंक्लूड सून, तो क्या ईरान वॉर मतलब खत्म होने के आसार हैं सर? धन्यवाद।
0: नहीं, जहां तक आपकी अमित जी आपका सवाल है करेंसी को लेके, तो इसकी बात हमेशा समय समय पर होती आई है, लेकिन ऐसा कोई ठोस अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहां पे ब्रिक्स जहाँ ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसीज में अपने जो व्यापार है वो अपनी अपनी अपनी करेंसी में करें, ये एक इस पे एक जोर है। साथ साथ जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको, जो सेंट्रल बैंक के पेमेंट सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से समावेश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रिक्स की कोई करेंसी इस तरह की होगी या उस पर कोई बहुत सीरियसली विचार हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दूसरा एक सवाल और भी था,
4: I think perhaps you will call
0: उनका सवाल था अमेरिका का और ईरान का जो युद्ध है, कि वो शायद अमेरिका राष्ट्रपति का वो हवाला दे रहे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्थिति आज की है वो स्थिति काफी मतलब चिंताजनक और खराब है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि युद्ध तुरंत खत्म होने जा रहा है।
4: Moving on, markets regulator SEBI today proposed changes to the methodology for calculating expiry day settlement prices of index and stock derivatives following a review of the newly introduced closing auction session CAS framework. In a consultation paper, SEBI proposed 2 options for determining the settlement prices: a blended volume weighted average price, WAP, based on trades executed during the last 30 minutes of the continuous trading session, CTS, and the 10-minute CAS or continuation of the existing CTS VWAP methodology. The proposals follow feedback received from market participants.

0: उम्मीद है क्या नहीं, तो आपकी उसमें क्या राय है? थैंक यू।
1: नहीं रत्नाकर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल उस पर डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन होते भी हैं।

0: लगता है रत्नाकर जी, ये काफी ऐसे जब भी ऐसे कोई समूह आपस में बैठते हैं 10-11 देश और साथ में पार्टनर नेशंस भी हैं 20 देश, तो ऐसी चीजों पे बिल्कुल सीरियस डिस्कशंस होते हैं।
1: ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हाँ, सुन पा रहा हूँ मैम।
1: जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हेलो,
3: आप सवाल पूछें गुरुनाथ जी।
2: हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी जो 6-7 महीने पहले जो जो वॉर चालू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे पहले हमारी मार्केट तो ऐसे लगता था कि 1 लाख के अंकों को भी छू जाएगा, तो ये मतलब अभी जो मार्केट जो नीचे आ गई है, तो इसमें क्या मतलब FIs या संस्थागत जो निवेशक होते हैं या डोमेस्टिक, क्या वो कम हो गए, और क्या ये जो और है इसका असर हमारे मार्केट पे पड़ा है क्या? थैंक यू।
0: नहीं गुरुनाथ जी, बिल्कुल इस जो भी जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो दुनिया में इस समय अनिश्चितता है, उसका हमारी बाजार को भी उसने कहीं ना कहीं, बाजार में वॉलेटिलिटी है या अनिश्चितता का माहौल

0: निश्चितता है वो बाजार में भी दिख रही है। साथ साथ जो आपने बात कही कि एफआईआईज ने भी पैसा निकाला, लेकिन एफआईआईज ने पैसा सिर्फ इस कारण से नहीं निकाला। एफआईआईज जो नेचर है उनका एज एन इन्वेस्टर, मेरा ये मानना है, वो जहां भी मौका देखते हैं उनको लगता है कि वहाँ, हाँ, वो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग उनका जो है इंटेंट रहता है, मोटिव रहता है, तो वो वहां पैसा लगाते हैं जहां जिस बाजार में उनको लगता है ज्यादा है। तो ऐसा कोई खास वजह,
1: वेरी लार्ज एक्सटेंट वर्क ऑन सेंटिमेंट्स and positive sentiments are required for markets to
0: yes,
1: go.
0: and despite that, Rajesh, our markets have not tanked, and even FIIs have withdrawn. Even then, the
1: Correct.
0: domestic investors, both institutional and retail, have posed a confidence in the Indian markets.
2: अन्य खबरों में, श्रोताओं, 4 सितंबर 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 45 अरब डॉलर के से बढ़कर 785.7 अरब डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा संपत्ति 47 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर लगभग 648 अरब डॉलर हो गई है। हालांकि सोने का भंडारण लगभग 2.5 अरब डॉलर से अधिक फिसलकर लगभग 114 अरब डॉलर रह गया है। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से वीरेंद्र जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो।
2: जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते
3: मैडम। जो जैसे अभी ये सुन रहा था ना प्रोग्राम की ये सब चर्चा कर रहे हैं, युद्ध वगैरह का, ईरान का, अमेरिका का,
2: जी
3: तो ये तो कॉमन बात हो गई, सबको पता है। इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, बजाय इस पे समाधान निकालिए कि जो विस्तार जो लड़ाई की वजह है, लड़ाई की वजह है विस्तारवाद, और विस्तारवाद की वजह है पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तिब्बत से विस्तार कर रहा है।
2: जी वीरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए।
1: I think we lost touch with him. In the meantime, we have a story on the RBI governor interview, Prachi.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाला निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और वे जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऋण वृद्धि बढ़ने के साथ साथ करेंसी प्रचलन, विदेशी मुद्रा बाजार में दखल और बैंकों की कोषीय आवश्यकताओं के जरिए समय के साथ कुछ अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया जाएगा। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट आई। ये गिरावट कच्चे तेल के दाम बढ़ने और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बीच दर्ज की गई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1733 अंक यानी 2.3% गिरकर 74782 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 500 अंक यानी 2% से अधिक फिसलकर 23398 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5% फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक इस सप्ताह लगभग 1% नीचे आया। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बिकवाली अधिक रही और सप्ताह के दौरान प्रमुख क्षेत्र गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी रियल्टी में सबसे अधिक यानी 6.5% से अधिक की गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी आईटी जिसमें सप्ताह के दौरान लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।
1: सिद्धार्थ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इन द आरबीआई गवर्नर्स इंटरव्यू, ही इज रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी, इंडियाज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट ही हैज मेड एंड ही इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया।
0: Rajesh, more than the statement that he's made, also the fact that we have got almost close to $130 billion through these FCNR deposits, that itself shows the current state of the Indian economy, the strength in the inherent strength in the Indian economy, and also what he's also reflected that because of this huge influx of money coming in, the liquidity is high in the market, but he's also assured the market that there's nothing to worry. RBI is looking into it. They are completely

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, आपके साथ मैं विकास।

प्रेम पुजारी इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक और किशोर कुमार साहब का ये गीत छोड़े जा रहा हूं मैं इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। ये निर्णय परीक्षा देने वाले छात्रों और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा समय पर पहुंचने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित जीजेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी यानी गीतों भरी कहानी। तो सुनिए कहानी कदमों में आसमान, कहानी छोटू की। उस दिन नीलिमा देर तक सोई रही। अचानक पापा की आवाज से उसकी आंखें खुली। नीलू बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे अभी तक सोई हुई हो क्या? पापा सोने दो ना, मैं देर रात तक वो अपना फेवरेट शो देख रही थी ना, इसलिए उठ नहीं पाई। अब आज ऑफिस से छुट्टी, नीलिमा अलसाई हुई बोली। उफ, ये लड़की भी ना, ये कोई सोने का टाइम है? तुम्हें अपने सिवा किसी और की भी परवाह है? उठो जल्दी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पापा ने सख्ती से कहा। तो नीलिमा उठकर बैठ गई। वो फ्रेश होकर हाथ में चाय का कप लिए पापा के पास आ गई। पापा गोविंद राम, जो आंखें बंद किए किसी उधेड़पुन में बैठे थे। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा, नीलिमा बोली। उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर नीलिमा के पापा बोले, सुन रहा हूँ कि तुम वो फरीदाबाद वाला फूड आउटलेट बंद कर रही हो और स्टाफ को निकाल रही हो, क्या ये सच है? पापा आपको पता तो है वो चलता तो है नहीं और उससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से सिर्फ स्टाफ की सैलरी निकल पाती है। अब ऐसे में उसे बंद ना करें तो क्या करें? नीलिमा, तुम्हें पता है इससे कितने लड़के बेरोजगार हो जाएंगे? और वो लड़का जो अभी अभी गांव से आया है वो कहाँ जाएगा? पापा चिंतित स्वर में बोले, होते हैं तो हो जाए, जहां मर्जी वहां जाए, हमने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। और वैसे भी इस दुनिया में कितने ही गरीब हैं, हम किस किस के बारे में सोचेंगे? और पापा, हम उन्हें एक महीने की सैलरी दे तो रहे हैं ना? नीलिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि उसके पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उनके दिल के किसी कोने में कोई कहानी घटाओं की भांति घिराई थी और उमड़ घुमड़ रही थी। उनके होठ बुदबुदा उठे।

0: आज गोविंद राम की जिंदगी की एक घटना भी उनका पीछा कर रही थी। उनके खामोशी में हजारों शब्द उगाए थे, लेकिन उन्हें चुप देखकर नीलिमा से ना रहा गया। वो बोली, पापा क्या सोच रहे हो? गोविंद राम मानो अचानक नींद से जागे, बोले, बेटा यहां बैठो मेरे पास। नीलिमा पापा की आंखों में देखते हुए और पास आकर बैठ गई। एक कहानी सुनोगी? जी कौन सी कहानी? छोटू, छोटू की कहानी। नीलिमा अपने पापा की आंखों में झांकने लगी थी। वहां एक नन्हा सा 9 साल का बच्चा नजर आ रहा था और किसी चलचित्र की भांति गोविंद राम फ्लैशबैक में जा चुके थे।
1: ए लड़के, तेरा नाम क्या है? अबे सुनाई नहीं देता क्या तुझे?
0: जी छोटू।
1: ओए छोटू, इधर आ, कहां मर गया था?
0: अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और आंखों से छोटू की मासूमियत बहने लगी। उसका भोला सच्चा मन कराह उठा। दूर कहीं रेडियो पर एक गीत बज रहा था।

छोटू का बचपन उस ढाबे नुमा होटल के कामों में कैद होकर रह गया था। फटे पुराने कपड़े पहने छोटू कभी ग्राहकों को चाय के ग्लास पकड़ाते देखा जाता तो कभी जूठे बर्तनों को साफ करते। मालिक की एक आवाज पर दौड़ते भागते छोटू की अपनी कोई मर्जी भी नहीं रह गई थी। सुबह से शाम तक, अबे सुन ओए लड़के, ओ छोटू इधर आ, छोटू कहाँ मर गया, छोटू ये कर, छोटू वो कर। अब तो छोटू अपना असली नाम तक भूल चुका था जो उसे उसके माता पिता ने दिया था। फिर भी छोटू हमेशा हंसता रहता।

अक्सर जब छोटू अकेला होता तो याद करता वो दिन जब वो अपने छोटे से गांव में अपनी माँ, बाबूजी और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहा करता था। दिन भर गांव में उछल कूद करता, कभी गिल्ली डंडा खेलता तो कभी कंचे। गांव की अमरैया में जाकर कभी कच्चे अमिया तोड़कर लाकर खाता तो कभी जामुन। कितना खुश था वो अपने गांव में। उसके दोस्त भी कितने अच्छे थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे मगर फिर सब एक हो जाते। गांव के गंगाराम ताऊ, मुरली भैया, भगत काका और भगतिन काकी सब कितने अच्छे थे। और एक यहाँ के लोग हैं, बिना बात के ही दुत्कारते हैं, मानो गरीब होना कोई अपराध हो। छोटू को याद आता वो भयानक दिन जब उसके मजदूर बाबूजी के ऊपर दीवार गिर गई थी। वो कुछ दिन बिस्तर पर पड़े रहे और फिर चल बसे। माँ नन्हे बच्चों और छोटू को गले लगाकर कितना रोई थी, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है भला।

छोटू की माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थी। उन्हीं दिनों गांव के जगन काका जो शहर में रहते थे छोटू को काम दिलाने के लिए शहर ले आए थे। उसने सोचा था कि वो शहर में आकर खूब पैसे कमाएगा, अपनी माँ का सहारा बनेगा, छोटे भाई बहनों के लिए ढेर सारी टॉफियां और मिठाइयां खरीदेगा। वो सब कुछ खरीदेगा जो देखकर उसका मन ललचाता रहता है। लेकिन उस नन्हे मन को क्या पता था, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जगन काका ने छोटू को एक ढाबे पर रखवा दिया था। ढाबे का मालिक एक संवेदनहीन इंसान था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छोटू एक बच्चा है। उसे बस काम और काम से मतलब था। छोटू गांव की कच्ची गलियों और झोपड़ी से निकल कर आया था। उसने शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। सड़क के किनारे बैठकर जब वो जूठे बर्तन धोता तो उसकी आंखें सड़क पर ही लगी रहती थीं। स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसके मन में भी अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने का उत्साह आता। अपने माता पिता की उंगली थामे घूमते आइसक्रीम खाते बच्चों को देखकर छोटू का बाल मन भी ललचा उठता। सड़क की चकाचौंध में गुम छोटू से जब काम करने में देर होने लगती तो ढाबे का मालिक चिल्लाने लगता और फिर छोटू सहम कर जल्दी जल्दी काम करने लगता। और इस तरह दिन पंछियों की तरह उड़ते जा रहे थे। मौसम बदल रहा था लेकिन छोटू के नसीब का रंग वही का वही।

ढाबे के मालिक का घर भी ढाबे के बगल में ही था। मालिक कभी कभी छोटू को घर के काम करने के लिए भी भेजता। मालिक की एक छोटी सी बेटी थी, नैनी। नैनी इकलौती बेटी थी। अकेली होने के नाते वो चाहती थी कि छोटू उसके साथ खेले। उसे खिलौनों से खेलती देखकर छोटू का बाल मन भी खेलने को होता। एक दिन छोटू को मालिक ने घर से कुछ सामान लाने को भेजा। छोटू ने देखा कि नैनी खेल रही है। उसने छोटू को भी अपने साथ खेलने के लिए आवाज दी, लेकिन छोटू ने मालिक के डांट के डर से मना कर दिया। तो नैनी रोने लगी। उसकी माँ ने नैनी को रोते देखा तो उन्हें लगा कि शायद छोटू ने कुछ कहा है। तो उन्होंने आओ देखा न ताओ और निर्दोष छोटू की पिटाई कर दी। इधर छोटू सामान लेकर देर से पहुंचा तो मालिक ने भी उसे पीट दिया। उस दिन रात को छोटू अपनी माँ को याद कर बहुत रोया और उसने मन ही मन सोच लिया कि कल सुबह वो अपने गांव भाग जाएगा, अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई तो उसे अपने गांव के सपने आने लगे। उसका प्यारा गांव, उसकी वो स्वर्ग जैसी झोपड़ी जहां उसकी माँ उसे थपकी देकर सुलाया करती थी।

छोटू सुबह तड़के चुपचाप उठा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। तभी अचानक उसे याद आया कि घर में बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिल पाती थी। छोटू चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था, उसकी विधवा माँ दूसरों के खेतों में काम करके किस तरह से तीनों बच्चों का पेट पाल रही थी। कभी कभी तो आधे पेट भी रह जाना पड़ता था। बदन पर कपड़े के नाम पर बस एक फटी बनियान थी। उसे याद आई अपनी झोपड़ी नुमा घर की। घर के नाम पर दो मिट्टी की टूटी दीवारों के बीच एक टूटा हुआ छप्पर था जो बारिश के समय टप टप टपकता रहता था, और चारों प्राणी दीवारों से चिपक कर किसी तरह रात काटते थे। और यहाँ कम से कम पेट तो भर जाता है, कुछ फटे पुराने कपड़े भी मिल ही जाते हैं, और उसकी माँ को ढाबे का मालिक हर महीने कुछ पैसे भी भेज देता है, तो माँ की मदद भी हो जाती है। घर की गरीबी और पिस्ती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर छोटू जड़ हो गया। उसके कदम जहां के तहां थम गए। आंखों में आंसू भरे भारी मन से लौट चला उसी ढाबे की ओर, और फिर एक बार अपनी बेबसी भरी जिंदगी से जद

एक दिन छोटू ने देखा कि नैनी अपनी माँ की उंगली पकड़े उसके लिए टॉफियां लेकर आई है। नैनी ने माँ को बता दिया था कि उस दिन छोटू की गलती नहीं थी, तो मालकिन ने कहा कि छोटू कभी कभी नैनी के पास आकर उसके साथ खेला करे। धीरे धीरे छोटू और नैनी दोस्त बन गए थे। छोटू को जब भी काम से फुर्सत मिलती तो वो दौड़कर नैनी के पास आ जाता। दोनों साथ साथ खेलते, बातें करते, लड़ते झगड़ते। बच्चों का कोमल मन कितना मासूम और निश्चल होता है ना? वो किसी भेदभाव को नहीं जानता। वो कौन है, मैं कौन हूँ, मालिक कौन, कौन नौकर, कौन बड़ा, कौन छोटा, ये बच्चों को नहीं पता होता। ये तो हम बड़े उनके दिमाग में डालते हैं। बच्चों को तो जरा बुरा लगा, झगड़ लिए, हट कर लिए, फिर थोड़ी देर में सब ठीक भी कर लिया। काश कि बड़े भी ऐसा कर पाते। खैर, नैनी जब पढ़ती तो छोटू भी उसके पास आकर बैठ जाता और टूटे फूटे शब्दों में पढ़ने की कोशिश करने लगता। छोटू को पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन काम से फुर्सत पाकर वो नैनी की किताब से उल्टा सीधा गलत सही पढ़ रहा था। नैनी ने देखा तो उसे सही सही पढ़ाने लगी। फिर उसने छोटू को अपनी एक पुरानी किताब दी और उसे कल पढ़कर आने के लिए कहा। छोटू देर रात तक पढ़ता रहा। अगले दिन उसकी आंख एक जोरदार थप्पड़ से खुली। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने यमराज की भांति ढाबे का मालिक खड़ा था। मालिक ने उसे गालियां देते हुए कॉलर पकड़कर झिझोड़ा, उसका फटा पुराना बिस्तर उठाकर फेंक दिया। बिस्तर में से कुछ किताबें और खिलौने गिर पड़े। वो छोटू से पूछने लगा, ये किताबें और खिलौने कहां से आए? छोटू ने जवाब दिया कि ये उसे नैने ने दिए हैं। मगर मालिक को छोटू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने छोटू को चोर समझा और डंडा ढूंढकर मारने के लिए दौड़ा। छोटू धीरे धीरे पिछले पैरों से सड़क की ओर खिसका और पलटकर तेज दौड़ा। अचानक तेजी से आती एक कार ने छोटू को टक्कर मार दी और छोटू वहीं गिर पड़ा।

0: कहानी कहते कहते गोविंद राम चुप हो गए थे। पापा, फिर क्या छोटू मर गया? नीलिमा ने रोते हुए पूछा। छोटू की सांसें बाकी थी, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। जब छोटू होश में आया तो वो एक हाथ से अपंग हो चुका था। छोटू का मालिक एक कोने में खड़ा था। उसके नाम FIR हुई थी। अब उसे बाल श्रम अधिनियम के तहत जेल जाने और जुर्माना भरने से कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस छोटू का बयान ले रही थी। बेटा डरो मत, बताओ किसने तुम्हें काम पर रखा था?
1: जी, किसी ने भी नहीं, छोटू बोला। मैं अपनी मर्जी से कर रहा था।
0: क्या मालिक ने तुम्हें मारा पीटा? तुम क्यों भाग रहे थे?
1: नहीं साहब, मालिक बहुत अच्छे हैं, मुझे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे गरीब को उन्होंने सहारा दिया, उनके बहुत एहसान है हम पर।
0: तो भाग क्यों रहे थे? पुलिस ऑफिसर बोला।
1: साहब, मैं तो बस खेल खेल में भाग रहा था, अचानक गाड़ी से टक्कर लग गई। मालिक तो बहुत अच्छे हैं साहब।
0: ढाबे के मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। आज छोटू कितना बड़ा हो गया था, उससे भी बड़ा।

अब छोटू कहाँ है? नीलिमा ने धीरे से पूछा। ये देखो तुम्हारे सामने। फिर ये सब कुछ बदला कैसे? आप छोटू से गोविंद राम कैसे बने? मालिक का दिल पसीज गया था। मालकिन एक नेक महिला थी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मेरे बचपन का नाम गोविंद था, जिसे मेरे माँ बाबूजी ने दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने धीरे धीरे खुद का काम शुरू किया, और अब जो ये तुम रेस्टोरेंट चला रही हो ना, उसी कड़ी मेहनत का परिणाम है। एक बात बताओ नीलू, एक सीमा के बाद समाज को वापस देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर एक गहरी सांस लेकर गोविंद राम रुके, चश्मे के भीतर उमड़ आए आंसुओं को साफ किया, फिर बोले, नीलू बेटा एक बात कहूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फरीदाबाद वाला आउटलेट बंद ना हो? कोई बात नहीं, स्टाफ की सैलरी तो आ ही जाती है ना, और वो लड़का जो नया नया गांव से आया है, उसे पूछना क्या वो आगे पढ़ना चाहता है। जी पापा, नीलिमा अब बदल चुकी थी, उसे समझ आ चुका था कि इंसान की जिंदगी का एक नजरिया और भी है, जिसमें अपनी खुदगर्जी के अलावा दूसरों के दुख दर्द को भी समझना जरूरी होता है, और शायद सही मायने में जीना इसी का नाम है।

तो दोस्तों ये थी कहानी छोटू की, कदमों तले आसमान। देखिए कितना अच्छा संदेश था, एक ऐसा लड़का जो अनाथ था लेकिन उसको सही दिशा दी ऐसे व्यक्ति ने, जिसके मन में प्रेम था, विश्वास था कि ये बच्चा एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों ऐसी कितनी ही घटनाएं हम अपने आसपास घटते देखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक संवेदनशीलता पैदा करें और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक आसरा दें, एक दिशा प्रदान करने में मदद करें ताकि वो अपने जीवन को सही दिशा दे पाएं। ये सब आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम आप मिलकर बनते हैं एक ऐसी कड़ी जो कि समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। तो ऐसे ही इस मानवतापूर्ण संदेश के साथ हम समेटते हैं अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। और ये कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता के प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों के विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे। बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित जीजेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लालबागचा राजा के दर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर की लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन महिलाओं ने लखपति बनकर सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ये दीक्षांत समारोह देशभर में 23 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। समारोह में श्री मेघवाल ने नए योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
2: The 18th BRICS summit kicked off here.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप गीत सुहाने लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ नमस्कार

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और प्यारे प्यारे गीत यहीं तो आपको सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही प्यारे गीतों की लड़ी लेकर आते हैं हम गीत सुहाने के बहाने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 1:22 और हो चुके हैं पूरे 18 सेकंड। गीत सुहाने का ये सफर है और अगला गीत हम लेकर आए, उससे पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं। कल क्या हो किसे पता, लेकिन ये जो लम्हा है ना, ये हमारा है और इस वक्त हम इस लम्हे के साथ हैं और बहे चले जा रहे हैं। नज़र और नसीब में भी क्या इत्तेफाक है, नज़र उसे ही पसंद करती है जो नसीब में नहीं होता। और अगला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म पारस मनी से।

बहुत ही मीठा सा ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज में फिल्म दिल एक मंदिर से। और सच में रात जब इतनी खूबसूरत सुहानी हो जहां ये ऐसे मीठे मधुर गीत चल रहे हो तो लगता ही है कि ये रात रुक जाए। लेकिन समय कब किसी के बांधे बंधा है, कब किसी के रुके रुका है, ये तो बस आगे बढ़ने का नाम है। तो चलिए समय के साथ आगे बढ़ते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए फिल्म शोला और शबनम से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

प्यार का बंधन ऐसा होता भी नहीं है कि वो टूट जाए, और प्यार का बंधन क्या है, इस गीत से ज़्यादा अच्छा कौन कह सकता है।

ये गीत सुना आपने आशा और रफी की आवाजों में, फिल्म नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे से, और इतना प्यारा ये गीत था। और अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, उससे पहले ये भी दो लाइनें आपकी नजर करते हुए कि वो दर्द ही था जो समा गया आंखों में, वो दर्द ही था जो समा गया आंखों में, जमाने की कितनी ही ठोकरें खाई हैं एक तुझे पाने में।

माया फिल्म का ये गीत सुना आपने लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और गीत सुहाने जो सफ़र है हमारा ये अब बस मुकम्मल हुआ जाता है। तो इससे पहले एक गीत और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म छोटी सी मुलाकात से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

0: बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला चीनी मिट्टी का ये स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाची से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान स्थित संचालकों और उनके कथित स्थानीय समर्थकों के नेटवर्क से जुड़े सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाए गए। तलाशी के दौरान मामले से संबंधित और भी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for a commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS Summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between the decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और रात सुरमई लेकर माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ। नमस्कार। कहते हैं ये इश्क नहीं आसां, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।

फिल्म कच्चे धागे से ये गीत सुन रहे थे आप अलका याग्निक और हंसराज की आवाजों में। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसे देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

लता और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म गुलामी से। अगले गीत की तरफ बढ़े उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए। बहुत खुश था वो, बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया वो घर के पास आकर। यहां आसेब के मारे हैं सारे, यहां तू पेशगोई मत किया कर। सखी एक बांटता है रोज खुशियां, तुलुए सुबह से पहले उठाकर। बहुत खुश था जो महफिल को हंसाकर, बहुत रोया घर के पास आकर।

फिल्म प्रेम रोग से ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे गाया लता जी और सुरेश वाडकर ने। बाट दुनिया भर के लोगों, जोहता रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का, खुला रहता हूं मैं। जिंदगी हैरान है मेरी ढिठाई देखकर, मुस्कुराकर गम के चालें काटता रहता हूं मैं। क्या ये मुमकिन है कि सजदे सब हो मेरे रायगा, जबकि तेरे इश्क में ही बावला रहता हूं मैं। और ढूंढने जो भी उसे निकला, वो खुद को खो ही गया। लोग कहते हैं मुझे भी लापता रहता हूं मैं। बाट दुनिया भर के लोगों, जो होता रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का, खुला रहता हूं मैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जहां बहुत सी बातें होती हैं और साथ ही साथ ऐसे नगमे हम आप तक पहुंचाते हैं जो हम सभी के दिलों को छू जाते हैं। और जब बात इश्क की होती है तो मुमताज का नाम आना तो लाजमी है, और जब मुमताज की बात होती है तो प्यार की यादगार वो इमारत भी याद आती है जिसका नाम है ताजमहल। और ताजमहल फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

फिल्म ताजमहल से गीत सुना आप सभी ने हरिहरन और प्रीति उत्तम की आवाजों में। जबानों पर उलझते दोस्तों को कौन समझाए, मोहब्बत की जबां मुमताज है सारी जबानों में। जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:50 और हो चुके हैं पूरे 20 सेकंड। रात सुरमई का ये सफ़र है जो यकीनन आप सभी को बहुत सुरमई लग रहा होगा। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं हम।

हौसला भले न दो उड़ान का, तस्करा तो छोड़ दो थकान का। जी हाँ, अब तो वाकई थकान से होने लगी है, क्योंकि अब बारी आ गई है आपसे इजाज़त लेने की। तो इजाज़त दीजिए माधुरी को, रात सुरमय का ये सफ़र यहीं तक। लेकिन आप बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण भी किया। इनमें फिलीपींस की प्रथम महिला लुइस अरनेता मार्कोस, ईरान के राष्ट्रपति की पुत्री जहरा पेजिशियन और ईरान के राष्ट्रपति के दामाद हसन मजीदी डिज़ा शामिल रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिटरी और दूसरी योजनाओं से आने वाले निवेश बहुत मजबूत रहा है। एक साक्षात्कार में श्री मल्होत्रा ने कहा कि ये मजबूत निवेश भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और कम समय में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता को भी सिद्ध करता है। बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी पर श्री मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक के पास नकदी को संभालने के लिए कई उपकरण हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क स्वदेशी तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल दर्शाती है। इस तकनीक में स्टील उत्पादन से निकलने वाली स्टील स्लैग को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदला जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किए जाने वाले समारोह में कहा कि स्टील स्लैग रोड तकनीक से सड़क निर्माण की लागत करीब 40% तक कम हो जाती है और पारंपरिक सड़कों की तुलना में इनकी मजबूती 4 गुना अधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nation adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: The 18th BRICS summit kicked off yesterday with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the growing institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम seafarers' emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स मेडिकल असिस्टेंस परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है
2: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue outside the lawns of Bharat Mandapam and posed for a family photo. They also visited the India Innovates exhibition. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two people. Prime Minister's Museum and Library hosted the visiting dignitaries participating in the BRICS summit. They included the First Lady of the Philippines, Luis Renata Marcos, daughter of the President of Iran, Zahra Pezeshkian, and son-in-law of the President of Iran, Hassan Majidi Dosaj. During the visit, the dignitaries toured blocks 1 and 2 of the museum and experienced the immersive exhibits at the Anubhuti section. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a bilateral meeting with Malaysian Minister of Investment, Trade and Industry, Datuk Seri Johari Abdul Ghani in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both the sides reviewed the India-Malaysia economic partnership and discussed ways to boost two-way trade and investment, improve market access, and strengthen the supply chain linkages in areas of complementary strengths. In T20 Women's Asia Cup cricket final, India will face defending champion Sri Lanka in Dubai today. The summit clash will begin at 8 p.m. Indian time. Seven-time champions India reached the final unbeaten, topping Group A with 3 wins before defeating Bangladesh by 40 runs in the semi-final. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, रात अपनी रफ्तार धीमी कर चुकी है। दिन भर की भागदौड़ जैसे कहीं पीछे छूट गई हो। और अब हमारे पास है थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनी यादों के लिए और उन एहसासों के लिए जिन्हें हम अक्सर दिन के उजाले में महसूस ही नहीं कर पाते। कहते हैं कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस दिल से दिल का रास्ता होना चाहिए। आप सुन रहे हैं हमराही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत था फिल्म अजनबी से। आज की रात हम बात करेंगे किसी से जुड़ने की। किसी से जुड़ना हमेशा उसके साथ होना नहीं होता दोस्तों, कभी कभी कोई बहुत दूर होकर भी हमारे बेहद करीब होता है। उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आती है, उसका एक संदेश पूरे दिन को खूबसूरत बना देता है, और कभी कभी तो सिर्फ उसका ख्याल ही दिल को सुकून देने के लिए काफी होता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं। किसी से जुड़ाव शायद यही है कि आप उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहें, अपनी परेशानियां बताने से पहले उसी का ख्याल आए, कुछ अच्छा हो तो उसे बताने का मन करे और कुछ अच्छा ना हो तो उसकी आवाज़ सुन लेने से ही मन हल्का हो जाए। शायद यही होता है एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और ठीक 48 सेकेंड। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक आते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सुबह खुलती है तो उनका ख्याल, दिन में कोई बात हो तो उन्हें बताने की इच्छा, शाम ढलती हो तो उनसे बात करने का मन और रात आती है तो उनकी याद। यही तो जुड़ाव है दिल से दिल का और शायद यही प्यार है।

रॉकी फिल्म के इस खूबसूरत गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। जानते हैं आप, कुछ रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात होती है उनमें बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, आप चुप हैं, सामने वाला समझ जाता है कि आप कहते हैं मैं ठीक हूं, और वह आपकी आवाज सुनकर कह देता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। कितना खूबसूरत होता है ना जब कोई आपके शब्दों से ज्यादा आपकी खामोशी पढ़ने लगे। शायद इसी को कहते हैं दिल से जुड़ना, क्योंकि आवाज तो हर कोई सुन सकता है लेकिन खामोशी सुनने वाला कोई खास ही होता है।

0: अलग, रास्ते अलग, समय अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जिंदगी में मौजूद रहते हैं। फोन की स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे दूरी कम हो गई हो। तभी तो कहते हैं दूरी रिश्तों को खत्म नहीं करती, अगर दिलों में जगह बनी रहे।
1: रेशम की डोरी

दोस्तों, प्यार हमेशा आई लव यू कहने से नहीं होता। कभी प्यार इस बात में होता है कि घर पहुंचकर बताना, कभी खाना खा लिया, कभी आज आवाज कुछ थकी हुई लग रही है, आराम कर लो, और कभी सिर्फ इतना कि मैं हूं, तुम चिंता मत करो। ये छोटे शब्द शायद दुनिया के लिए मामूली हैं, लेकिन जिस दिल को इसकी जरूरत होती है उसके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। किसी का ख्याल रखना, उसकी खुशी में खुश होना और दुख में चुपचाप खड़े रहना, यही तो जुड़ाव है।

रात में यादें कुछ ज्यादा करीब आ जाती हैं। दिन में जिन बातों को हम टाल देते हैं, रात में वही हमारे सामने बैठ जाती हैं। कोई पुरानी बातचीत, कोई मुलाकात, किसी की हंसी, किसी की मुस्कुराहट, और फिर लगता है कि काश वो इंसान इस वक्त हमारे साथ होता। शायद रिश्तों की यही खूबसूरती है कि इंसान दूर हो सकता है, एहसास नहीं। जिससे दिल जुड़ जाए वो दूरी में भी साथ रहता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। भारत चौथी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कल पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, अनेक संस्कृतियों और एक लय की भी विशेष प्रस्तुति रही, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है। समय हुआ है सुबह के 4:11 और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, सुबह के इस खूबसूरत बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज को सुंदर बनाने का अधिकार हमारे पास है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, ये खुद से मिलने का समय है। दिन शुरू होने से पहले अगर हम अपने मन से दो बातें कर लें तो पूरा दिन बदल सकता है। आज सुबह खुद से पूछिए, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ? किसी के लिए एक अच्छा शब्द, किसी की मदद, किसी को माफ करना, या शायद खुद को थोड़ा समय देना।

हर बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, कई छोटे छोटे अच्छे कदमों से शुरू होता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं शिकायत कम करूंगा और समाधान ज्यादा ढूंढूंगा। आज मैं चिंता कम करूंगा और प्रयास ज्यादा करूंगा। और आज मैं खुद पर थोड़ा और विश्वास करूंगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:25 और ठीक 25 सेकेंड। आइए दोस्तों, इस सुबह की शुरुआत करें उस शक्ति को याद करके जिसने हमें एक और दिन दिया है। हे ईश्वर, आज का दिन हमें धैर्य दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि मुश्किलों के सामने हम हार न मानें।

आज की सकारात्मक बात है जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी कभी रुक कर देखिए, आपके पास एक नया दिन है। सांसें हैं, अपने लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास फिर से कोशिश करने का मौका है। कृतज्ञता मन को बहुत हल्का कर देती है। आज सुबह बस 3 चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शायद आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो।

साथियों, क्यों ना आज खुद से एक वादा करें, मैं अपने लिए बुरा नहीं बोलूंगा। मैं अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी पहचानूंगा। मैं हर गलती से सीखूंगा। मैं किसी की सफलता से नहीं जलूंगा, बल्कि उसे प्रेरणा लूंगा। और सबसे जरूरी, मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि रास्ता मुश्किल है।

ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो,

पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे काम को अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना सभी को गले लगाना।

याद रखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन मंजिल असंभव नहीं। कभी कभी हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए बस एक चीज की जरूरत होती है, वो है एक और कोशिश। तो अगर कोशिश असफल हुई थी तो आज फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी सफलता बन जाए।

सुबह सुबह अपने मन में पुरानी शिकायत मत भरिए। कल किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी काम में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, उसे कुछ देर के लिए वहीं छोड़ दीजिए। हर सुबह पिछले दिन का बोझ लेकर चलेंगे तो नए दिन की खूबसूरती कैसे महसूस करेंगे। इसलिए कल को अनुभव बनाइए, बोझ नहीं। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखिए।

तो दोस्तों अब ये खूबसूरत सुबह आगे बढ़ रही है और सुबह की सुगबुगाहट होने लगी है और जिंदगी हमें आवाज देने लगी है कि चलो आज कुछ अच्छा करते हैं।

इस खूबसूरत गीत और संदेश के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। 5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया गया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी अनेक संस्कृतियां एक लय की भी विशेष प्रस्तुतियां रहीं, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने अनूठी सामूहिक संगीत प्रस्तुति में एक साथ भाग लिया। विभिन्न देशों की विविध संगीत परंपराओं से सजी इस सिम्फनी में साझा कलात्मक अभिव्यक्ति रही, जिसमें ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता की भावना प्रतिबिंबित हुई। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से 3 दिन का मुंबई दौरा आरंभ किया। इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में गृहमंत्री श्री गणेश ज्ञानरति शीर्षक से पांडुलिपियों की विशेष रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे वहां पुस्तकालय का दौरा करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि दर्शकों की आवाजाही के कारण स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि इस दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग, DDU मार्ग और JLN मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है। यातायात पुलिस ने दर्शकों को उनके प्रवेश द्वार के अनुसार निर्धारित मार्गों से स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज और बिजली की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने वाले उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को अपनी तस्वीर भेंट की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने उस दावे को फर्जी बताया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली चीनी मिट्टी की स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने 12 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सस्ते दाम पर वॉशिंग मशीन के पुर्जे देने के नाम पर गुजरात को एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after the adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
1: Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. Prime Minister Modi highlighted that both the sides must be guided by three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. The two leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of the overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman discussed opportunities to further deepen the India-Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, partnership. The Finance Minister met President of Asian Infrastructure Investment Bank, Zhu Jiai, in New Delhi. In a social media post, Finance Ministry said, discussions were held on supporting India's infrastructure and transport connectivity priorities, enhancing local currency financing, increasing private sector participation and global presence of AIIB. Anthropic CEO Dario Amodei has called for artificial intelligence industry to slow its rapid development, saying safety measures need time to catch up with the technology. Iraq has dismissed the commander of military operations in Maysan province and reportedly ordered a temporary closure of the Shalom Sheikh border crossing with Iran as a precaution following an investigation into the drone attacks on Saudi Arabia's east-west pipeline. Saudi Arabia had earlier stated that the attacks originated from Iraq but opted not to respond, instead supporting the Iraqi government's efforts. In Yemen, the Houthis claimed Saudi Arabia carried out more than 100 airstrikes in

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुबह की वेला में कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। एक नई सुबह, एक नया सूरज, हवा में घुली ताजगी, पेड़ों पर पत्तियों पर ठहरी ओस और पक्षियों की चहचहाहट, जैसे प्रकृति हमसे कह रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है। भोर सुहानी की सुबह की ताजगी के साथ करेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में उम्मीद जगा दे। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि प्रकृति हमें बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखाती है? पेड़ देखिए, आंधी आती है, तूफान आता है, कभी शाखाएं टूटती हैं, लेकिन मौसम बदलते ही वही पेड़ फिर नई पत्तियों से भर जाता है। प्रकृति यही बताती है कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती। अगर पेड़ हर पतझड़ के बाद कह देता कि अब मेरे जीवन में बस सूखापन रहेगा, तो कभी नई हरियाली नहीं आती। इसलिए अगर जिंदगी में सूनापन लग रहा है, तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

सुबह की पहली किरण कितनी खूबसूरत होती है ना, अंधेरों को धीरे धीरे पीछे छोड़ती हुई और आसमान पर रोशनी की एक नई लकीर खींचती हुई। सूरज हमें रोज एक संदेश देता है। हर रात के बाद सुबह होती है, तो फिर हम अपनी परेशानियों से क्यों डरे। आज अगर रास्ता मुश्किलों में है तो चलना मत छोड़िए, सफलता यदि दूर है तो कोशिश करना मत छोड़िए।

सुबह सुबह जब किसी बगीचे में जाइए तो फूलों को देखिए। गुलाब को इस बात की फिक्र नहीं कि सामने वाला फूल उससे ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं। सूरजमुखी को ये फिक्र नहीं कि वो गुलाब क्यों नहीं। हर फूल अपनी पहचान के साथ खिलता है। शायद यही बात हमारे लिए भी है। किसी का बसंत आज है तो किसी का कल आएगा। बस इतना देखिए कि क्या आपका आज कल के आज से थोड़ा बेहतर है।

जरा ध्यान दीजिए, सुबह के इस शांत वातावरण में पंछियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। इन नन्हे परिंदों को देखिए, उन्हें नहीं मालूम कि आज इन्हें कितना दाना मिलेगा, ये भी नहीं मालूम कि मौसम कैसा रहेगा, फिर भी वे सुबह होते ही पंख फैलाकर उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आसमान में उनके लिए भी जगह है। फिर हम क्यों डरे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ चलते हैं, अपनी उम्मीद के पंख फैलाए।